0: अर्जुग में एक नाम आधार बोलो कलयुग में
1: फिर
0: बोलो कलयुग में
1: एक नाम आधार
0: एक वचन होर बापू का रोज पढ़ते हो तुसी तीसरे बापू जी कहते आवासिया नाम भाई वाहगुरु आखो वाहगुरु साचा नाम मेरा आधार बोलो साचा नाम मेरा एक गल एक वचन तीसरे बापू गोद वाले सतगुरु कह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दो वचन उन्हों की रचना तो निकलिया है कि मेरा कोई आसरा ना पुत ना धी ना भैन ना भरा हो कोई आसरा नहीं साचा नाम मेरा आखिर जी की मिलिया जदन का नाम का आसरा लिया जी पता नहीं किन्नी बसवाद अवस्था विच कहते साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब बोलना जिन भुखा तुसी की सोचते कि जिस बंदे को दौलत आ जाए उनकी भुखा मिल जाती है आखो वाहगुरु तुसी की सोचते 500 गज की कोठी च रहने वाले की भुख मिट गई अपने अंदर नूं पुछो हिंदुस्तान के महिला में राजा बन के बह गया सृष्टि का कोई राजा बन के बह गया कि वह सुखी हो गया सगल सृष्टि को राजा दुखी रहा भुख नहीं मिटी धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते दुनिया के लोग नाम च इन बरकत ने नाम जिन्हों के घर आ गए उन्होंने सारिया भुखा मैं थोड़ा जा अच्छा रखना आलाद न दुनिया बड़ा प्यार करती मगर औलाद का सुख किसे कर्म वाले नसीब हों मार दें औलाद आखो सतनाम कल मेरे अमृतसर साहब के कोल किसी पिंड एक बच्चा किसी नशे आदि हो गया आखो सतनाम फा लैण की कोशिश की मां प्यो कहिंदा सी मैनू नशा लै के दे मां ने कहा पुत हथी यार इतना देना उस पुत ने फिर चाकू कढ़िया चाकू जेडी मां ने 9 महीने पेट विच रखिया जेडी मां ने सुके थां ते उन्हूं पाया ते आप गिले थां पेंदी रही ये भजन भाई गुरदास जी ने लिखे ने उस मां दे पेट विच 12 चाकू मारे उस मुंडे ने पाड़ के रख सी मां दा पेट अंदर सारियां बाहर औलाद तां दुनिया नूं मिल जांदी औलाद दे सुख बड़े औखे गुरु साहिब कहिंदे जिन्हां दे घरां विच नाम आया उन्हां नूं औलाद दा वी सुख मिलिया जिन भुखा बोलो ना जिन भुखा औलाद दे प्यार दी वी भुख लोकी औलाद मंगदे पुत हो जांदे मगर कई बार ओह पुत यम बन जांदे यम धीआं यम बन जांदियां नवा यम बन जांदियां भैन भरा कई बार यम बन जांदे मगर बापू कहिंदा नाम जपना शुरू किया सब भुखां मिटियां औलाद दा नवां दा पुत्तां दा धीआं दा समाज भरा दौलत दा हर सुख मेरे घर विच आया मगर ओहदा आधार मैं बेस जो बनाया ओह सी

याद रखे करो प्रभु का स्मरण गर्भ ना बस है प्रभु का स्मरण दूध जामा कभी घर चो भजा चाहते हो बाबिया को कविता वाले को कदी कबर से तुरे करता जीव कदी कितने तुरे करता सिर्फ चौदह मेरे घरों कले कलेश नष्ट है महाराज मेरा काम चल पवे तो महाराज पातशाह की कह रहे सिमरो सिमर सिमर सुखावत अगे पढ़ो की लिखे बिना इतो भी मिट जू फिर कबर से की लैन जाते ना झूठे पेंदे हो गुरु तो नाले धग कविता को जाके गुरु तो झूठे पीने गुरु तो झूठे ना कहो एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तुम गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज कहें वेलो कि मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आके क्या रेजी नलज लाज तो हे नहीं ये नलज बेशर्म जीव तेन शर्म नहीं आती आखिर की गलती होगी ए गुरु का सिख हो गया कबर के मथे टेकन दे हर ताज करत हर ताज ताज मैंने छड़ के इनू छड़ के करत कानून ते जाई होर ना वल तुरया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहते नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा कहता नहीं तू कहते सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हें कोल की लैन जाना है जे जीवना तेरा ठाकुरा ते मरिया कोल की लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी का वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखे अपनी जीवते को मुए को मरे नु मरिया मिलता है जीवते नु जीवदा मिलता है तुरदे नु तुरदा मिलता है उड़दे नु उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागे कवितर चक्कर के ना पै गुरुद्वारे आया कर गुरुद्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए इतने गुरुद्वारे आया कर वेख इतने किसी नु कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई गुरबाणी ने विच लिखा है हर बिन कछु न लागे बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिक्या बोलो आन तार कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय दीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो ले एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ उहनू रचना नू खातबो के क्या ए रचना पहलो ए कहो हां ए रचना गल करो इहदे नाल ए तुम अनरस राज रही जेड़ा रस तेन गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री ओनू कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस ए रसना तू ओ वाहेगुरु की गल छड़ के चुगलियां बड़ियां कर दी क्यों नहीं करते हैं आदो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां कर देना आपां कर दे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक की मौत ते करांदी चुगल ते निंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पानी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई सामदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਰੂਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਪੀ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਕਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪੇ।

गया। मेरी कथा वापसी होते पिछले साल सिंधी परिवार ने सदया जो मैं ननकाना साहब कथा करने गया मैं बहुत ही परिवार देखे जो हलाल मीट सिख खा रहे थे जो मुसलमान गऊं बकरियां दुकाना सामने बाजार से ननकाना साहब लगिया बेअंत बीबिया के बंदे मैं उ टच टच करते मीट खाते देखे कि खलो ता सही सिखी का खलोण का ना है सिखी का टिकण का ना है जिथे सिर उ आरे फिरे ओनू पैरां तों लैके सिर तक रूह च बनता जो अग को लेके आए ओनु पुछया तेनू डर नहीं आउंदा कहिंदा डर इस गल का नहीं कि तू मैनू अग लाएगा ते मैं सड़ जूंगा ते मेरी मौत हो जू चिंता तां की जो मरना अनहोनी नहीं मरना समझ रहे हो ना तेरे बच्चे नू कि मर जाना शरीर विचों ए अनहोनी नहीं अनहोनी ये है कि सिख होके दाढ़ी कटा दे ए अनहोनी सिख होके शराब पी ले सिख होके कुकर्म कर दे सिख होके करंट विचों गिर जाए ए अनहोनी है कोई सिख मर लगा ते गुरु कोल नहीं गया मगर सिख करैक्टर चो करन लगा है ते रात वाला बचन फिर रिपीट करा गुरु बू अगे जाके खलो गया अनहोनी ना हो जाए कोई सिख शहीद होया गुरु कोल नहीं गया कोई गल नहीं जो आया सब इतने कोई गल नहीं जिहड़ा पैदा होया उन्हें जाना ही जाना मगर एक भी सिख शहीद होने वाले गुरु कोल नहीं गया ते मैं तेन मरनो बचाना गुरु उस घड़ी कोल गया है कि सिखा करैक्टर धोना गिरती मगर आपो अपने अतीत नु शीशे च खिलारो ते पुछो की असी करैक्टर चुचे सुचे आपने मैं बचन पढ़ता आया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु ओ कहना सी निज नारी के संग ने हो तुम लित पटियो पर नारी की शेर पूल सुपने भी न गईयो रोज पढ़ते हो पर तेरे रूप ना पेखे अखा नाल भी नहीं पराए तन नु तकना ते सिखा तेरे ते जीवन नु अज कित अंदरों कोई दूरबीन नाल वेखण वाला होवे ना अखां तेरियां गंदियां कन्न तेरे गंदे रसना तेरी गंदी जीवन तेरा गंदा ओ गुरु गोबिंद सिंह तेनू गल नाल कितना ला लै तू आसा करदा है कोई घड़ी इहो जी आवे जदों नीले पाणी वाला एडियां उच्चियां बाहां करे उच्चे दुमाले वाला कलगी वाला पातशाह चिट्टे बाजा वाला इस तरह करे मेनू कलेजे नाल लावे तू अरदासा करदा है गुरु गोबिंद सिंह साहब दा ते इक वचन आउंदा है जिहड़ा बंदा अपने करैक्टर चों गिर गया गल नाल लाउणा ते इक पासे मैं थोकदा भी नहीं उहदे ते मैं वेखदा भी नहीं उहदे वल मेरा नाता ही करैक्टर नाल रहणी रहे जिंदे होके बैठो एक मिनट लई रहणी रहे मैं सिख ही नहीं उहनूं बणाउंगा मैं तुहानूं कहूंगा ओ साहिब कोई रह पक्का ते मैं उहनूं मंजे ते बाह के उहनूं मंजे ते बाह दूं ते मैं उहदे पैरां 'च बह जाऊं गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह इखलाक दी मूर्त है ध्यान देना जरा आखो सतनाम श्री चंबे की राणी गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार च आई एकाग्रता बनाया आखो सतनाम श्री सतगुरु का भी जरा कद सी आत्मक कद ते ओदे वर्गा किसी का भी नहीं हो सकता गुरु गोबिंद सिंह वर्गा शरीर करके 7.5 फुट उच्चा कद गुरु गोबिंद सिंह साहब का दसिया 7.5 फुट ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉ ਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਪਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਇਤਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਛੁਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਆ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੀ ਆਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨੀ ਫੇਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ

0: माता जीत कौरा, माता
1: जीत कौरा
0: मेरी अपनी औरत, निज नारी के संग ने हो तुम नित बटियो, जेडी मेरी निज औरत है। देवी किसी के शरीर नु जे हाथ लगा है गोविंद सिंह दा, ते केवल मैं अपनी औरत दे शरीर नु हाथ लाया है। जेडी भैन बच्ची आउंदी मैं ओदे शरीर नु तीर ता लाउणा है, मैं किसी देवी दे शरीर नु हाथ नहीं लाउंदा। फिकर नु ते वेख, अपनी रहणी नु ते वेख, ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज दा प्यारा पैरां तों लेके सिर तक रूह च सड़ गया, अग ला दित्ती गई। इतिहासकार कहिंदा है सवेर तों लेके शामां तक चांदनी चौंक दे लोक कोठियां ते चढ़ के वेंदे रहे, ते भाई सतीदास दा शरीर रिझदा रहा रूह च, रिझदे शरीर विचों आवाज आउंदी जाई सिर

आप सज्जना कदी आवाज मारियो, आवाज जरूर मारियो, आउंदा दे आउंदा दे, आवाज जिन्हें मारी उन्होंने घर आउंदा दे। धन गुरु ग्रंथ साहब की गोद बैठा कह रहे थोड़ा चौकीदार आउंदा दे आवाज मारियो, फिर एक बार रिपीट करावा जे आवाज मारियो, मारो अंदर आत्मा तो आवाज, आप सज्जना हाँ देखा घर अपनड़े खड़ी तका, घर अपनड़े खड़ी तका।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेड़े मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजयां दी पूजा विच नहीं लाया। आख्या नहीं वह परमेश्वर जी की पूजा करनी है वह राजान राज बोलो राजान राजयां दा भी राजा है किसे राजे की पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जेड़े हुए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे की पूजा नहीं करनी राजयां दे राजे की पूजा करनी राजान राज गरीब नवाज पातशाह। लोकी दिन चढ़दा है गड़वियां लिख के पानी दियां जग लिख के पानी दियां सूरज नूं मत्था टेकदे ने सूरज की पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं सूरज की पूजा नहीं करनी जेदी सूरज पूजा करनी है वह पानान पान है वह सूरजां दा भी सूरज है ओदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने चंद्रमा की पूजा करदे ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं चंद्रमा दे हाथ वास कुछ नहीं चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा नमो चंद्र चंद्रे की पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या की पूजा करिए कहण लगे नहीं देवी देवत्या की पूजा नहीं करनी। कहण लगे किनू पूजिए धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे ओ देवान देव्या देवत्या का भी वह देवता है ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीयां पूजां विचों ला के मड़ियां दीयां कबरां तो चुक के बांह फड़ के आख्या ओ भोलिया मरियां दीयां कबरां ते मत्था ना टेक आ मैं तेनू दसा जागत जोत जपे निसबासर बुझियां जोतां दे उत्ते ना मत्था टेक जागदी जोत नू मत्था टेक शब्द सदा जपदी जोत है जिहदे लड़ लाउण वाले बापू नू एक बार फिर आखो

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरलाए ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया है गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर, कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनण वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास, इहनू फाइयां लैके जिहड़े फंड वाले ने ओ मेरे सतगुरु ने लिखिया वा, पंजाह ने लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखा शिकारी ने मगर एक सिखिया, केता बंचू काल किन्ना चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचो है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आने वाली सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरियां आ गई जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हों तो बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नू खतरे चार चपेरे पै गए ते दा बचा की है। इको ही बचा वा कि तुसी सिमरन अभ्यासी बन जाओ, तत्ती वाओ ना लगे ही कदों जदों पार ब्रह्म शरण आई। एदी शरण विच आ जाओ, सिखो साडे दुश्मन भी तां बने ने, असी तां अज तक नुकसान विच गए हां, असी भी गुरु नानक दा पल्ला छड़ दिता है। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इनियां अनेरियां आ रही ने उड़ा के लै जाणगियां, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूंह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मरदानिया ए नेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इनी अग दी नेरी आ रही उड़ा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते नेरियां तेनू कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नू बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानू पहलो सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आने वाली ने कई बंदे सोचते कई नहीं सोचते, कई कहते खाना पीना हसना सोना बस इना कुछ ही है, मगर थोड़ा जा सुचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जी इस वे पंथ के दुआले नहीं हुई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती जे सारियां मुसीबतों तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथों तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जी एड्स है ना, ये सिखा तो फैली। यह छोटा जा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, यह दुनिया च बदनाम करन केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डिया ते खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार में लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो ये तो बचना कितना है, सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखा विच कट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जन समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझण लग पैणगे, मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखता ही लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा। सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मोढ़ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे रहमत करे, बचन दा करन नूं बहुत दिल करदा फेर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया ना, जिन्हां ने काले विच काले वाला विच जदों भज सकदा बह सकदा उठ सकदा नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलने लगा है। हांजी
1: कल साई स्यो पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यो पिरहड़ी। फरीदा उस मालिक नाल प्रेम कर, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले।

0: दूर घर। कई बार आप इस तरह पढ़ लें गलीए चिकड़ दूर घर। कल परसों मैं एक गुरसिख दे कोल बैठा सा इत्थे ते जदों आनंद साहब दा पाठ होया ते बड़ा सियाणा गुरसिख कह रहा है वाजे अनहद धूरे। वाजे अनहद की आ उत्थे तूरे तूरे तूरे तत्ते नाल तुरियां तुरियां वजणियां अंदर। बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे। जदों गुरु दे चरणां नाल जीव आत्मा जुड़ जांदी आ ते अंदर तुरियां दा नाद हुंदा है, अंदर तुरियां वजदियां ने। मगर जदों जाप विच पूरा जुड़ जांदी आ जीव आत्मा फिर अंदरों तुरियां सुनदियां ने, अंदरों वाजा। जेड़े सतगुरु अनहद वाज नाद की गल करते ने वह नाद की गल करते। मेरे साहब जी कहिंदे इत्थे भी चेता रखियो गलीए चिकड़ गलियां दे विच चिकड़िया दूर घर। घर मेरा उस वाहिगुरु परमेश्वर तो दूर आ, नाल प्यारे ने उस परमेश्वर नाल मेरा प्यार पै गया जिदे नाल मैं प्यार कर दी। बाबा फरीद जी कहिंदे ने उहदा घर बड़ा दूर आ ते गलियां दे विच चिकड़ भरिया पिया है। हां जी
1: चला ता पिजे कंबली रहा ता टुटे नहो।
0: जे मैं उहदे घर नूं तुरदी आ ते कंबली भेजदी कपड़े भेजदे ने, मगर कपड़े ते भेजदी आ मगर रह पई मैं घर पी कपड़े ना भेज जाने। मगर हुण मोहे रहण ना वेहावे नींद ना आवे। ए विछोड़ा रात नींद ना आई तरफ दीदी हाए उथे संगत केहो जी कथा होगी होगी उथे केहो जा कीर्तन होगा होगे। हो सकदा कोई करमात्मा जुड़ गई होवे ते जुड़ के जपन लग पी होवे वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। हो सकदा किसे दी सुरत जुड़ गई होवे ते मैं उस लाभ तो वांझी क्यों रह गई। जे जानी आ ते कपड़े भेजदे ने। एक गुरु रामदास महाराज पातशाह बड़ा प्यारा वचन करदे ने कहिंदे समुंद सागर होवे बहु खारा। बोलो समुंद सागर होवे एक पासे सिख खलोता होवे दूसरे पासे सिख नूं दस दिता जावे कि उस कंडे दे उत्ते कलगियां वाला पातशाह बैठा है ते फिर सिख दा प्यार गुरु रामदास साहब इस तरह दा होवे। गुरु रामदास साहब कहिंदे ने इन्ना खारा समुंदर होवे ते आपां गुरसिख लंघ गुरु पे जाई गुरसिख फिर छाला मार दे ओदी याद। भौरे नूं किसे ने पुछया आखो सतनाम श्री फिर एक बार गज के आख्या करो सतनाम। भौरे नूं किसे ने आख्या वो भलिया तू चलिया वा फुल दे उते ते की गल तेरा फुल दे नाल आंदा मेरा प्यार बड़ा है फुल नाल। एक बार एकाग्रता बख्शो मेरा प्यार बड़ा है फुल दे नाल ते उन्हें आख्या तू बहुता उथे जाके गलवकड़ियां पाउना वा फुल दे नाल ते तेनू पता अज तक तेरे किन्ने भरा मरे ने उथे फुल दे नाल गलवकड़ी पाई ए चेता ही भुल गया कि मैं उड़ना भी हां ते फुल दियां पत्तियां बंद हो गई ते विच रह के कई भौरे मर गई ते उन्हें अगों हस के आख्या जिहदे नाल मैं प्यार करदा जे उहदे नाल गलवकड़ी पिया मर जावां ते इहदे नाल होर चंगा की। जिहदे नाल मैं प्यार करदा जे उह पार बैठा होवे ते मैं समुंदर च छाल मारा ते उहदी याद विच डुब के मर जा। ध्यान दियो आखर ते जदों मैं समुंदर च डुबूंगा ते लोकी आख्या ही करनगे ना कि गुरु नूं मिलन गया डुब के मर गया। लग गया ना गुरु दे लेखे आ गया ना गुरु दा नाम विच ते जे कोई ठेके ते जांदा मर गया। मोया मंदी सोए बाणी च लिखिया मोया मरन तो बाद भी ओदे चेले ओदे पोतरे उन्हां नूं कोई पुछदे तेरा दादा कितना मरिया ही ते गल टाल जांदे कहिंदे नहीं मैनू नहीं पता कितना मरिया सी क्योंकि दसना पैना है ना कि मेरा दादा ठेके ते बिठा मर गया। किड्डे मान नाल कोई दसदा है कि मेरा बापू ननकाणा साहब गया ते ननकाणा साहब गए नूं बड़ी दुनिया डकदी रही भौरे नूं कहिंदे रह कि उथे मसंद दा बड़ा वड्डा कब्जा ही उन्हें अंग्रेजा नाल रल के बड़ा वड्डा कारा कर देना ही। उन्हें कहा नहीं ओ सजना हुण चला ता भिजे कंबली रहा ता टुटे जे रहना ता प्यार टुटदा है ते फिर आप जी नूं पता वा कि लत्तां तां करके ते सिर थले करके भाई लक्ष्मण सिंह नूं पुठा टंगता। एक छोटे जे बच्चे दी भी कहानी आउंदी एक एक पैसा किते जोड़दा रहा घर दे विच किते पुछदा सी जदों सिख पिंडां दे विच हवाका होण दिंदे ते कहिंदे आओ जिन्हें कुरबानी लैनी आ आओ जिन्हें शहीदी पाउणी आ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जिहड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जिहड़े नाम जपदे ने ना उहनां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेडे नाम जपदे ने उहनां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उहनां ते शतर अनेक चलावत कहावत तन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हथ उहनां नूं अपना हथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कहतो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न भखे पड़हारे अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुट्ठा मूंह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नूं याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारियो ए 24 घंटे वाहगुरु दी याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छडा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के कि उथों छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया। विचों गर्भे निकल आया, बोलो विचों गर्भे निकल आया। जो बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
माया जितना अग्न अग दी अंदर च तरले पाउंदा सा है मैं सड़ जूंगा आ बार माया दी अग विच भी बंदिया इथे भी तरले पा उस वाहिगुरु नू इथे भी तेन जे अंदरों की अग विच उन्हें छड़ाया वा ना ते इस अग दे विचों भी तेरी सहायता उन्हें ही करनी है इथे क्यों भुल गया है ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ

सरल जिहा बचन आ एकाग्रता बख्शियो कि सतगुरु के दर्शन धनता दे योग ने, जो गुरु के दीदार करने ने वह धनता दे योग ने। मगर भाई गुरुदास जी कहते ने जिहड़ा दर्शन करन आया है वह भी घट नहीं, धन धन गुरसिख परसन आया। जिथे गुरु के दीदार धन ने वह सिख भी धन आ जिन्हें आण के गुरु के दीदार किते ते कन्ना विच आवाज पई सारे दुखां दा दारू दो।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आणके, गुरु सत्कार विच आणके, आप जी सरबत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जिन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश हो के आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणज।

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जाणिए। बोलो तां व्यापारी। व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो। हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उहनू लोकी कहिंदे नहीं इहनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारियो के कुछ तां व्यापारी जाणिए लाहा लै जाओ। लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया की रास पा के दिती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है। मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने स्वास, आखिया एक एक स्वास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई। मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु की गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोहेला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: आखो जी सतनाम श्री भाई रे भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच उथों तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे पजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैंने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलन किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलन किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलन जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचों निकले सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत
1: नाम वाहे गुरु
0: भैणों गज के
1: नाम वाहे गुरु
0: मेरिया धियां गज के जरा बोलो।

0: साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठिया लिखिया ने मिशनरी कॉलेज वाले चिट्ठिया लिख सतगुर वल पाईया चिट्ठिया लिख दोखी ते लिखे ने उन्हां दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानू आ बेनती करदी आ मैं तुहानू आ बेनती करदी आ जीव आत्मा वालों चिट्ठिया लिखिया कदी पढ़ियो कदी चिट्ठिया लिख सतगुर वल पाईया फिर बोलो चिट्ठिया लिख आपां वी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पंज क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके दा ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता दा शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो

वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी हो दे तो बिना उदास हो गई है, शेर देर नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे पेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी वी, एक भोरी

0: करो कृपा
1: विण सेर सेव करी जय विण सेर सेव करी जय विण सेर
0: ये पक्के गुरु दिया प्रेमणा ने जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलने का चा मन विच पैदा होया वह सौदा कर दिया ने कहिंदियां सिर दवांगियां सिर सिर दा मूड़ा बना के तेन उत्ते पावांगियां एक बार मेनू प्यारे दा राह दस अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले मैं आ जूटा सैटी जिथे गया सा गुरमुख प्यारे भी गए सी भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे एक सज्जन मिलिया मेनू एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे पूरे गुरु दे दी किना दी आ फिर एक बार आखो का दी जी अधूरे बड़े ने 99 अज अधूरे ने इस दुनिया ते इस वेले 99 गुरु अधूरे ने 99 एको ही पूरा है बाणी गुरु एदे तो बिना कोई धरती ते गुरु नहीं उथे कमाल दी गल सुनाई सहते मोना सी ओ कहिंदा जी कथा सुनदा वा आनंद आया जीवन विच मैं तुहानू घुमण खाणा है किसे दिन जूटा साल्ट लेक दे लागे लागे बड़े सुंदर पहाड़ ने बर्फ पैंदी मैनू कहिंदा मैं तुहानू घुमा के लिया घुमाण लै गया ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शो मैं कोई रोचक गल बना के आप जी का ध्यान नहीं उहदे विचों कुछ लैणा चाहुंना पहाड़ी दे उत्ते लै गया जाके कहण लगा कि कुछ दिनां तों जदों दा कथा सुन लिया मेरा मन करदा है कि मैं अमृत छक लां आप जी नूं खुशी दी गल दसां 27 तरीक नूं उत्थे अमृत दा बाटा तैयार करना है सारा शहर ही अमृत छकण लई तैयार हो गया जिन्नियां 60 फैमिलियां रहिंदियां ने जूटा सिटी दे विच 60 दियां 60 फैमिलियां ही अमृत छकण लई तैयार सारियां ने नाल खाता ऐसी गुरु की कृपा हुई इनू जदों दास ने बेनती की छसरना जे तेन गुरु के बचन प्यारे लगे ने ते फिर तू अमृत छकण लई तैयार हो जा कहिंदा मैं नाम लिया है ध्यान दियो मैं नाम लिया है मैं कहा नाम कितों लै लिया पंजां तो बिना ते नाम कोई दे नहीं सकता बोलो आखो सतनाम श्री क्योंकि एक बाणी दे विच बचन लिखा सतगुर दाता हर नाम का सतगुर दाता फिर बोलो सतगुर दाता गज के एक बार आखो नाम कौन दे सकदा सतगुर दाता अमृत दा बाटा भी जे कोई कल्ला बंदा बना के दे दे ते लै लोगे पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर धर शक पुन लेवे कल्ला बंदा ते रहत भी दृढ़ करावे ते नहीं लैनी पुन मिल पंचों रहत जो भाखे ताको दृढ़ कर मन में रखे जेड़े पंजां दा फैसला है ते कहन लगा जी मैं नाम लिया है मैं कित्थों लै लिया नाम राधा स्वामी तो कहिंदा नहीं मैं निरंकारियां कोलों कहिंदा नहीं साडे दुश्मन थोड़े नहीं होना आप जी नूं तां बेनतियां करदा सचेत होने की जरूरत दुश्मन थोड़े नहीं आख्या फिर कित्थों लिया सच्चे सौदे वाले का लै लिया ही नूर महल वाले का कोई शब्द शुभ चानना वेख लिया कहिंदा ना इन्हां दा नहीं लिया मैं क्या फिर तू कित्थों लै लिया एक बड़ी सत्कारयोग संस्था का नां लैके कहिंदा जी पुचो दी मंडी वाले कोलों नाम लिया पुचो मंडी बाबा हरनाम सिंह साहब बड़े जीवन वाले हुए ने बड़ी करनी वाले बड़ा सिमरन व्यासी रूह हुई रब दे चरणा नाल लपटी हुई रूह रही मैं कहा पुचो मंडी वाले दा नाम ते मैं सत्कार नाल सुनिया देखिया तो नहीं कदी वो नाम देंदे ने कहिंदे जी उन्हां दी एक शाखा है मलूका पिंड बठिंडे जिले च मैं कहा जी उत्थे की है कहिंदा आओ मैं तुहानू घर जाके विखाउणा ध्यान देना आखो सतनाम श्री जितना दा भाई जरनैल सिंह साहब दा शरीर है ना इतना दी पग इतना दा कमीज पजामा करन मरड़ी दाढ़ी उस बाबे दी नाम उहदा बलविंदर सिंह कहिंदा मैनू उहने नाम दिता है मैं की नाम दिता है दस देंगा कहिंदा दसदा तां नहीं उह कहिंदे ने दसना नहीं नाम किसे नूं मगर तुहाडे नाल वी प्रेम पै गया मैं दस दूं उहने नाम की दिता ध्यान दिओ मैं की नाम दिता है तुसीं हैरान हो जाओगे इन्हां कालियां भेडां नूं कित्थों फड़ोगे हुण इन्हां नूं कित्थों फड़ोगे राधा स्वामी का पता लग गया कि साडे दुश्मन ने सानू तोड़ दे निरंकारियां का तो पता लग गया आ जिहड़ियां सिक्खी भेस विच कालियां भेडां इन्हां नूं की करोगे आखण लगे जी उहने नाम दिता मैं की नाम दिता है कहिंदा एक ओंकार सुनियो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद ओम इन्ना लिख के ना एक ओंकार सतनाम ते नाल जोड़ता ओम फिर अगे सुनो बह जा पुत बह जा इना दे के ਨਾਲ ਓਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀ ਸਭ ਅੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਸ਼ੇਵਾਇ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵਾੜਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਓਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰਿਅੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਹ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪਿਓ।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे दे चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते हो सकदा है गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो पवा के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थान दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रचिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करौनी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागा वाला दिन आना है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड्ड दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो।

एक बार भैनों बच्चियो तुसी भी पढ़ो, जदों कदे परवटे कटाउण कोई लगे, जदों कदे कोई कर्म कर लगे बच्ची बच्चा, उदों सानू पता लग जाए अंतर जामी जान मेरा प्रभ

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच नानक खुशी पी सच